0: वो ख्वाब जो अपने अंदर हजारों उम्मीदें समाए हुए, कमसन बच्चों के खून ने पाकीजा किया जिसे, ये खाक अब आसमान में नए रंग बिखेर रही है। इस महकती खाक में सांस लेते हैं।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल गुजर गए हजरत आदम को ज़मीन पर मबूत हुए, मगर आज भी इस दुनिया पर, इस सरज़मीन पर हक और बातिल की जंग जारी है। दुनिया बढ़ती जाएगी, गुज़रते जाएंगे लोग, बादशाहतें, मुमलिकतें, लेकिन हमारी गुफ्तगू उनसे है कि जिनके अंदर अभी भी हक की तलाश जारी है, या यूँ कहें कि उनके यहाँ फितरत का बीज अभी बाकी है कि जिसको हक की आबियारी चाहिए। इसी काम को लेकर हम आपकी खिदमत में अभी ख़याबान वली असर स्ट्रीट, जो कि तेहरान की एक बहुत बड़ी, बल्कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट कहलाती है, हम आपके लिए लेकर आए हैं जंग से पहले, जंग के दौरान और अभी के हालात कि जो सीज़ फायर में चल रहे हैं, कि जहां अभी भी इम्कान है कि शायद कभी भी जंग शुरू हो जाए। अब हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक तो वो रिवायत कि जहां पर अमेरिका इसराइल ने मिसाइल मारे, वो जगह जहां पर लोग रहते थे, हॉस्पिटल, स्कूल, कि जहाँ बच्चे पढ़ने की नीयत से आए थे। दूसरा वो हम आपको दिखाएंगे कि ये पहले कैसे रह रहे थे और अब ये कैसे रह रहे हैं, क्या फ़र्क आया है इनकी ज़िंदगी के अंदर। तीसरा हम आपको उस जगह भी लेकर जाएंगे कि जहाँ पर रहबर को शहीद किया गया, एक ऐसा रहबर कि जिसने जुल्म के मुकाबले में दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवरों को सामने झुकना पसंद नहीं किया, बल्कि तवक्कुल अल्लाह किया और तौहीद की हक्कानियत को इस दुनिया में पेश किया। यकीनन ये ख़याबान वली असर हमें इमाम ज़माना की भी याद दिलाती है और ये इनकलाब उसी ज़हूर की तरफ बढ़ता है। हम आपको दिखाएंगे कि असल रिवायत इलाही क्या है।

0: इमारतें फिर बन जाएंगी, मगर जो इन पर गुजरी है वो रातें वो लम्हे पलट नहीं सकते, वो जो बिछड़े हैं वो लौट नहीं सकते, वो दीवारों पर लगी तस्वीरें, ताकतों पर रखी किताबें जो पारा पारा हो गई, खाक में तहरीरें बिखर गई।
1: तेहरान का ये इलाका रिसालत का इलाका है जो कि एक रिहायशी इलाका है। 10 मार्च को यहाँ पर एक नहीं कई मिसाइल मारे गए। दुश्मन जो ये दावा करता है कि हम बड़ा प्रिसाइज, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम किसी को मार सकते हैं, मगर उसने एक ही जगह पर 300 घरों को बर्बाद कर दिया। 20 लोग शहीद हुए जिसमें से 12 लोग एक ही फैमिली के थे। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लाशें भी कई दिनों के बाद मिली। मलबा आज इतने दिन गुजरने के बाद भी आपके सामने है कि ये दुश्मन चाहता यही था कि आम इंसानों का कत्ल करे।

दोपहर का वक्त, रोजे की हालत में कितने लोग अपने घरों से इस उम्मीद से गए होंगे जब वो आएंगे तो अफ्तार करेंगे। कितने लोगों ने इन घरों में ये ख्वाब देखे होंगे कि वो अपने बच्चों के लिए शादी करेंगे। कितने लोग पढ़ने के लिए, कितने बच्चे रोज़ा रखकर इस नीयत से घर से निकले होंगे कि आज शाम को अफ्तारी करेंगे। गोके हालत जंग थी, शायद 18 या 19 रमज़ान थी और शबे कदर की आमाल की तैयारियां भी होंगी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि जो घर से निकले हैं जब लौटेंगे तो उनके घर घर नहीं, खाक हो चुके। यहाँ पे जो शहीद हो गए या जिनके घर ख़त्म हो गए, यकीनन उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आज हम अगर इतने अरसे के बाद यहाँ पर आए हैं तो हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो जुल्म अमेरिका और इसराइल ने किया है उसे दुनिया तक बताया जाए। यही मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खासा है कि कभी भी जुल्म के मुकाबले में झुकना नहीं है और मजलूम का साथ देना है। आए आज हम फैसला करें कि हम तारीख के किस हिस्से पर हैं। क्या कल हमारा नाम तारीख में लिखा जाएगा कि हमने जुल्म का मुकाबला किया या मजलूम की सदा में सदा को बुलंद किया।

0: जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक ही फैमिली के लोग, मुझे बाकी नहीं मगर शहीद मेहदी यार उन जवानों में से एक जवान है कि जैसा कि आपको पता है कि ईरान में बहुत ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है और हाल ही में इनकी टीम भी वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने के लिए ट्रैवल कर चुकी है। ये भी ये चाहता होगा कि जब ये मैच हो तो ये अपने दादा के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसको देखे, मगर इसका कसूर क्या था? इसका कसूर यही था कि ये उस कौम और उस मिल्लत का जवान था कि जो जुल्म के मुकाबले में खड़ा होते हैं और मज़लूमाने जहान का साथ देते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि मज़लूम का साथ दो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो, और ये शहादत सआदत है। ज़ाहिरन ये सब चले गए मगर इनका खून जो है वो आने वाली नस्लों को जिंदा रखेगा।
1: आसमान पर रोशनी और बम की सदाएं, अस्पताल में भगदड़, एमरजेंसी में मरीज, और कोई वजूद उन हालात में दुनिया में आ रहा है कि बारूद की खुशबू फैली हुई है। नर्सें व्हीलचेयर को दौड़ाती, कोई नौजाद बच्चों को गोदों में उठाती, मगर कोई कहां इन दर्दों को समझेगा जहां जख्म खाक से भरे हुए हैं।
0: हम लोग जहां अभी खड़े हैं, ये एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है गांधी। न सिर्फ हॉस्पिटल है बल्कि यहाँ पे इसके बराबर में इसका होटल भी है, और ये एक बड़ा मॉडर्न और बड़ा एक्यूब जो है वो हॉस्पिटल है। क्यों इसको अमेरिका ने मारा? ताकि लोगों के अंदर इस्तेराब पैदा हो। एक जगह पर मिसाइल मारते थे और फिर उसके बाद हॉस्पिटल को भी हिट करते थे, ताकि वो जो लोग इलाज के लिए आए हैं वो कहाँ जाएँ, लोगों के अंदर बेचैनी हो। जिस तरह इन्होंने गजा के अंदर हॉस्पिटलों को बर्बाद किया, यहाँ पर भी उन्होंने कई हॉस्पिटलों को हिट किया। ईरान के अंदर ये कहने को हम सिर्फ आर्मी या निज़ामी जगह को मारने की कोशिश कर रहे हैं या हम उनको मार रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शहरों में किसी शहर को मारा गया या मिसाइल मारे गए, वो तेहरान शहर है। यहाँ पर न सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि हेरिटेज कल्चर की जगह, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, यानी हर वो चीज़ जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में उसका हिस्सा है, जहाँ वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजारता है। कहने को तो ये कहते थे कि हम तो ईरानी लोगों की मदद करना चाहते हैं, मगर ये कैसी मदद थी कि जब हॉस्पिटलों को वीरान कर दिया, मदरसों को खाक में दबा दिया, यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर रहे हैं, पुलों को तोड़ रहे हैं, ये कौन सी मदद है, ये कौन सी इंसानियत है? देखें, ये सब तो दोबारा बन जाएगा, मगर दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि जुल्म कैसा होता है और जालिम के मुकाबले में डट कर खड़े होना कैसे होता है। तकरीबन 60 के करीब हॉस्पिटल और क्लिनिक को जो है वो अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों ने, मिसाइलों ने निशाना बनाया, और तकरीबन 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसें जो हैं वो हिट की गई। वो ये तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो इंसानियत की बका और एक ह्यूमन के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन न जाने क्यों इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इस मामले में खामोश हो गए, कोई आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। देखें, यहाँ पर भी इस शहीद बच्चों की तस्वीरें, और ईरानियों ने हर उस जगह को जहाँ पर ये हमले हुए हैं उन्हें यादगार शहदा बना दिया।

ईरान में हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर या यूँ कहें कि 60-70% स्टाफ है वो फीमेल होता है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, नर्सेज हैं, और ना सिर्फ जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद ख्वातीन की है और उसमें अक्सर जो है वो शादीशुदा अपने घर वाली होती हैं, वो भी यही चाहती हैं कि वो अपने घर को सपोर्ट करें और माशरे की भी खिदमत करें। तो आप खुद सोचें कि जब

पर जंग हो, बमबारी होती है, तो वहां पर सबसे पहले लोग कहाँ जाते होंगे? हॉस्पिटल, क्लिनिक और जहां पर ये सब कुछ इलाज होता है। लेकिन अगर उन जगहों को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए तो न सिर्फ हॉस्पिटल में आने वाले मरीज मुश्किलात में हैं, बल्कि इसके बाद से लेकर ये तमाम जो स्टाफ है वो भी अपने घरों को बैठा है। एक वीडियो आपने देखी होगी, हम उस हॉस्पिटल तो नहीं जा पाए जहाँ पर एक नर्स ने जब वहाँ पर

ये कार्ड है पेट्रोल का, कि जो सब्सिडाइज पेट्रोल की एक लिमिट है जो यहाँ पे हर किसी को मिलती है, इस पे तकरीबन 2.5 रुपए का लीटर पड़ता है, और अगर आप विदाउट सब्सिडाइज करवाना चाहें तो वो तकरीबन 8 रुपए का है। जंग यहाँ पर है और पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया। कितने दिन हो गए जंग को यहाँ पर, लेकिन आप देखें ना पेट्रोल की किल्लत है, ना कोई लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल आराम से मिल रहा है। इज़्ज़ाने मोहतरम, अब आप हक के लिए खड़े हों दुश्मन खुद घुटने टेक देता है। ये तकरीबन 180 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, और तकरीबन हमने 20 लीटर जो है वो पेट्रोल डलवाया है। तो अब आप खुद सोच लें कि $1 में कितना पेट्रोल आता होगा।

वो मासूम बच्चियां, वो मेनाब की बेटियां, जो खुद फूल की कलियां थीं, जिनके हाथ किताबों के सफ़े पलटने के लिए थे, जिनके हाथ परिंदों को दाना डालने के लिए थे, जिनकी उम्र मुस्कुराहटों की थी। अचानक खामोशी, परिंदे परवास कर गए मगर खून आलूदा परों के साथ। अभी तो रोजे रखना शुरू किए थे, अभी तो नए कपड़े खरीदने बाबा के साथ जाना था, मगर अफ्तार न हो सका, न ईद तक पहुंच सके। माओ ने खाक से टुकड़ों को उठाया है।

तो है, यानी एक यूरो भी पूरा नहीं हो रहा, लेकिन जंग की पोजीशन में भी यहाँ पर वाफर मिकदार में मौजूद है। या आप ड्रैगन फ्रूट्स को देखें, या आप नारियल कोकोनट को देख लें, ये अक्सर चीज़ें बाहर से आती हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पाकिस्तानी आम भी मौजूद हैं, यानी कि अभी सीज़न स्टार्ट हुआ ही है, मगर पाकिस्तानी आम भी यहाँ पहुँच गया है। तो आपको लगता है कि जंग की वजह से जहाँ बहुत सारे मुल्क मुश्किलात में हैं कि हमारा फूड क्राइसिस हो गया है, फूड क्राइसिस हो जाएगा, तो जंग ये जीत रहे हैं या जंग हार रहे हैं, ये आप खुद बताइएगा। बाजार में सब चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीतल के बर्तन के जो यहाँ का ख़ास सकाफती और कल्चरल हेरिटेज भी है, ये ख़ास तरीके से बर्तनों को बनाते भी हैं, न सिर्फ यहाँ इस्तेमाल होता है बल्कि पूरी दुनिया में भी ये यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। हम आगे की तरफ चलते हैं और आप यहाँ देखते रहेंगे कि मसाले हों, बहुत सारी चीज़ें हों, यहाँ पर सब मौजूद है और एक कसीर तादाद में जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के अंदर कोई कमी आ गई है। ड्राई नट्स आप देख लें, माशाल्लाह हर चीज़ जो है वो यहाँ पर वाफिर मकदार में है और ताज़ा नज़र। और खजूर तो आप जानते हैं ईरान की बहुत फेमस है, कि जब माह मुबारक रमज़ान में अक्सर मुल्कों में अफ्तार बग़ैर ईरान की खजूर के शुरू ही नहीं। ईरान की जो सबसे चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, जिसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है, वो है ज़ाफ़रान। और आप जानते हैं कि ईरान ज़ाफ़रान की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी है, पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, स्वीट्स देख लें, या आप बहुत ये सारी चीज़ें लोकल प्रोड्यूस्ड हैं और बेहतरीन तरीके से जारी है। कहने का मकसद और दिखाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है वो आधी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है, तो जंग कौन जीता। हम आए हैं तारीख को दोबारा लिखने, हम आए हैं ये बताने कि आज़ाद कौमें भी तरक्की कर सकती हैं। और असल आज़ादी का मतलब अपने आप को खुदा के हवाले करना है। आज़ादी से नहीं कहते कि इंसान अपने आप को जो है वो लिबास को कम कर ले या मगरबी सकाफत को अपना ले। आज़ादी तो यही है कि इंसान अपने नफ्स से आज़ाद हो जाए और ख़ुदा की तरफ रुजू करे। यही एक दास्तान न सिर्फ एक शख्स की है बल्कि कौम की है, वो कौम कि जो कई सालों से जद्दोजहद कर रही है, वो कौम के कई सालों से एक ही नारा लगाती है कि जुल्म के मुकाबले में डटे रहना है। और ये बातें नई नहीं हैं, ये बातें दर्स करबला का है, ये मकतब इमाम हुसैन की कौम है कि जिसने अपने आप को कटवाना पसंद किया, ना कि दुश्मन के आगे झुकाना पसंद किया। तो यही चीज़ इंसान को ताकत देती है और इस कौम ने आज आपके सामने वो करके दिखाया कि यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ पर कोई कमी महसूस की जाती है। दुनिया न जाने किस निगाह से देखती है और न जाने किस निगाह से प्रोपोगंडा करती है। वो यही तो है, एक तस्वीर जो है वो मैदान यानी ग्राउंड की पिक्चर है और एक तस्वीर वो है जिसे दुश्मन दिखाना चाहता है, मगर असली तस्वीर जो है वो इलाही तस्वीर है कि इंसान अल्लाह की राह में कैसे होना चाहिए। और जब इंसान खुदा की राह की तरफ बढ़ता है तो खुद ब खुद वो निखर कर सामने आता है, खुद एक नूर की तरह आलम में छा जाता है। आज पूरी दुनिया इस कौम की हिम्मत और बहादुरी की बात कर रही है, तो इस कौम के पास कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ चली गई तो वो रहबर हैं, लेकिन वो भी नहीं गए, क्योंकि शहीद तो हमेशा जिंदा है।

कालीन आप देख रहे हैं, इस कालीन को बुनने में इन्हें 7 साल लगे, और ऐसे बहुत सारे आप ये डिज़ाइन देख लें, आप इसकी ज़र्फ़कारी को देख लें, आप इन रंगों को देख लें, तो आप क्या समझते हैं कि ये कौम इतनी आसानी से हार मानेगी? जिसके कालीनों के जो डिज़ाइन हों वो 2-2, 2500 साल पुराने हों, तो उसको वो कौम हराएगी कि जिसे अभी बनने में भी 200 साल हुए? आप ख़ुद बताइए, जंग कौन जीता?

इंडस्ट्रीज़ को कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग थी उनको हिट किया, मेडिसिन की फैक्ट्रीज़ को हिट किया, और हत्ता यहाँ तक के डेयरी जो फैक्ट्रीज़ थी यानी दूध दही और रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल बनाती थी उनको भी हिट किया। क्यों हिट किया? जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने हर फील्ड में अपने आप को एक कामयाबी के मकाम तक बना दिया था, और इस तरक्की का राज ये था कि जितनी इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी उतना ये तरक्की करते गए और तरक्की करते करते, और यही चीज़ दुश्मन को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकी फैक्ट्रीज़ को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने की कोशिश की ताकि ये कौम जो है वो नुकसान में हो और अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके। मगर ये कौम, ये मिल्लत इमाम हुसैन की है जिसका इरादा बदनों के कटने से नहीं रुकता।

0: 61 हिजरी की करबला ने हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच कर ये बता दिया है। जो मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शागिर्द होगा उसके बदन के टुकड़े तो बिखर जाएंगे मगर वो झुकेगा नहीं। खयाबाने किश्वर दोस्त से उठने वाली खाक ने आज के दौर में हक और बातिल को वाजे किया है कि जान का चला जाना नुकसान नहीं बल्कि हयात है। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह।
1: दुनिया कहती थी कि महलों में ये शख्स रहता है, कहते थे कि इसकी दुनिया में बहुत जायदाद है। कई लोगों ने कहा कि ये बंकरों में जिंदगी गुजारे, मगर वो शख्स यही कहता रहा कि जब मेरी सारी आवाम सड़कों पर या आम जिंदगी गुजारती है तो मैं क्यों बंकरों के अंदर चला जाऊं। हाँ, वो एक शख्स कि जो खलूस और इखलास के साथ रोज़े की हालत में अपने मौला की तरह अपने खाले के हकीकी से जा मिला, यकीनन रूह बदन से निकल गई मगर उसने ऐसी परवाज की आलम को अहाते में ले लिया। हर एक दिल उसके लिए उदास है। वो एक सादा सी जिंदगी गुजारते हुए वो एक आम इंसान की तरह कि जहाँ वो जानता था कि मेरी हुकूमत में अगर एक शख्स कम से कम गजा खा सकता है तो वो उतनी ही गजा खाता था। उसके घर में बिछा हुआ कालीन उसके इज़्ज़वाज का था, उसकी अपनी आमदनी उसकी किताबों के बेचने से होती थी, लेकिन वो इतना मजबूत था कि जब वो हर्फ निकलते थे तो दुनिया के सियासतदान की निगाहें उसी की तरफ होती थीं। उसका एक इशारा होता था तो दुनिया की सुपर पावरें हिलना शुरू हो जाती थीं। और यही वजह थी कि दुश्मन ने चाहा कि हमेशा इसको हस्फ किया जाए, मिटाया जाए, दिलों में नफ़रतें डाली जाएं, लोगों को निज़ाम के खिलाफ किया जाए। मगर लोग ये नहीं जानते थे कि जिसकी ज़िंदगी कुरान पर गुजरी हो, जिसकी अंगूठी पर लिखा हो इन्ना माया रब्बी, कि मेरा रब मेरे साथ है, तो जितना वो बदन में ताकतवर था उससे ज़्यादा वो ताकतवर तब हुआ कि जब रूह बदन से निकल गई। हिंदू हो, मसीह हो, सिख हो, चाहे मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो, चाहे कोई हिजाब करता हो या गैर हिजाब का हो, सबका दिल उसके लिए धड़कता है। 70-80 दिन होने वाले हैं मगर यहाँ आशिकों का एक तवाफ चल रहा है। रात सर्द हो चुकी है, हवा ठंडी है यकीनन, मगर खून की तपिश ने वजूद को गर्म रखा हुआ है। और आशिकान पूरे आलम से इस एक सड़क को कि जो तेहरान की एक सादी सी सड़क है आकर इजहार अकीदत करते हैं और कितना गिरिया करते हैं कि काश हमने पहले पहचाना होता, हमें देर हो गई कि हमने अपने रहबर को ना पहचाना। हाँ, वो रहबर के जो अली का नौकर था, वो कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर अपनी ज़िंदगी गुजारता था, हयात मन्ना जिल्ला, के जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। उसने कोई सौदा नहीं किया, न मिल्लत का, न कौम का, न इरादों का। और यही आज इरादे थे, यही आज हुरूफ थे कि जिसने कौम को बेदार कर दिया, बेइज्जत मर्दुम हो गई। आज हर वजूद खुरूशां है, हर वजूद सड़कों पर है कि जिसका रहबर मार दिया जाए उनकी अपनी जान की कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये सब करबला के राही हैं कि जिसकी शर्त ये है कि गर्दन कटेगी तो ही दाखला मिलेगा।

और लोग समझते थे कि इसे ख़त्म कर देंगे, दास्तान ख़त्म हो जाएगी। नहीं, यजीद ने भी यही समझा कि इमाम हुसैन को करबला में ख़त्म कर देगा तो दास्तान ख़त्म हो जाएगी। मगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो जुमला कि माँ रहे तो इल्ला जमीला।

मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। एक विस्पर, एक मुनाजात है। मुनाजात में हमेशा ये नहीं नजर आएगा परवरदिगार मुझे माल दे दे, मुझे कुर्सी दे दे, मुझे दौलत दे दे। मुनाजात में मारिफत मांगी जाएगी, मुनाजात में इरफान मांगा जाएगा, मुनाजात में स्पिरिचुअलिटी मानी जाएगी, मांगी जाएगी। मुनाजात में प्रॉक्सिमिटी जो अल्लाह तबारक व तआला तलब की जाएगी। जितना इंसान अल्लाह से करीब होता जाएगा, अल्लाह की मारिफत उसे हासिल होती जाएगी, उतना ही इंसान की ज़िंदगी पुरसकून गुजरती है। इलाही अंत कमाओ हिब्बो, जैसे तू है, जैसा तू है वैसे ही मैं चाहता था, ये जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तू है। शायद मैं हमेशा जुमला कहा करता हूँ, अगर मुझे भी इख्तियार दिया जाता तुम अपने लिए एक गॉड को सेलेक्ट कर लो जैसा तू है, उससे बेहतर मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला करीम है, अल्लाह तबारक व तआला अलीम है, अजाब में जल्दी नहीं करता, कहार ज़रूर है, जब्बार ज़रूर है, मोहलत देता है, तौबा की मोहलत, रिपेंटेंस की मोहलत, फर्गिवनेस की मोहलत, इससे बेहतर खुदा हमें कहाँ मिलेगा। अकीदा इंसान को मजबूत होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला को लेकर। दूसरा जुमला, इलाही कफा भी फ़खरन अन तकून ली रब्बा, जो सेकेंड स्टेज है इस मुनाजात का, इस विस्परिंग का, कि परवरदिगार तू मेरे लिए ये फ़ख्र काफ़ी है, ये मेरे लिए प्राइड काफ़ी है, इफ्तिखार काफ़ी है कि तू मेरा रब है, तू बेहतरीन रब और मेरा रब। एक बेहतरीन रब का होना है कि अल्लाह है वो मेरा रब है, मैं तुझे मानता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ, तू मेरा रब है, ये मेरे लिए इफ्तिखार है। कोई मुझसे पूछे तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुमला, सबसे बड़ा अकीदा, सबसे बड़ी तुम्हारी फेथ क्या है, तो मैं कहूँगा मैं अल्लाह को मानता हूँ जो अल्लाह मेरा रब है। ये इफ्तिखार इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए। और तीसरा जुमला, कफ़ा बी इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, क्या चाहिए मुझे मेरी ज़िंदगी में, कौन सा स्टेटस चाहिए, कौन सा पोजीशन चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में। इमाम सलीका सिखा रहे हैं, सबसे बड़ा स्टेटस, सबसे बड़ा पोजीशन, सबसे बड़ा रुतबा अगर इंसान को चाहिए कि वह इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए, द सर्वेंट ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। अब्दुल्लाह बनना बड़े बड़ा बड़ा कमाल है, बड़ी मेहनत भी लगती है, इसमें आसान नहीं है। अब्द खुदा होना आसान नहीं है, इंसान हर एक का गुलाम बनने के लिए तैयार होता है, अल्लाह का सर्वेंट बनने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए कि सर्वेंट बनने के कुछ तकाजे होते हैं, मालिक हो जाता है कोई, कोई अल्लाह अगर उसका मालिक हो जाता है तो मालिक के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ डिमांड्स होते हैं, उसे फुलफ़िल करना पड़ता है। इलाही कफा भी इज़्ज़न, अगर मैं अजीज़ हूँ या मुझे इज़्ज़त चाहिए, सबसे बढ़कर क्या इज़्ज़त कि अय अल्लाह मैं तेरा अब्द, तू मेरा रब है और मैं तेरा अब्द हूँ और सर्वेंट। ये तीन जुमले इतने खूबसूरत मुनाजाते हैं, बार बार इन मुनाजात को दोहराने को दिल करता। और तीन जुमले और जो बहुत ही हिकमत वाले हैं, विजडम वाले हैं, इन तीन जुमलात ने मुझ पर इतना असर किया, जाइस कहता है मैं तैयार हूँ अपना सारा इल्म इस पर कुर्बान कर दूँ। वो तीन जुमले कौन से हैं? पहला जुमला, अलमारूफ़ो बेकदरिल मारिफा, किसी के साथ नेकी करना चाहते हो, किसी की खिदमत करना चाहते हो, देखो उसके अंदर कितना इल्म है, कितनी हिकमत है, कितनी मारिफत है, वो कितना खिदमत करने का सलीका रखता है। जितना आदमी की मारिफत बढ़ती चली जाएगी, उतनी इंसान के अंदर नेकी करने का शौक़ बढ़ जाता है। एक अच्छी कम्युनिटी में काम करने का शौक़ बढ़ जाना चाहिए, एक नेक कम्युनिटी में काम करने का शौक़ बढ़ जाए, इसलिए कि जहाँ मारिफत नज़र आती है वहाँ खिदमत भी इंसान करने को इंसान का दिल चाहता है, इंसान आगे बढ़ेगा। जहाँ अप्रिसिएशन होते हैं, जहाँ पर थैंक्स गिविंग होती है, जहाँ पर शुक्रिया होता है, वहाँ बंदा काम ज़्यादा करने लगता है। इमाम फरमा रहे ठीक है, खिदमत करना है, एहसान करना है, ये एहसान फर्स्ट है, या कम्युनिटी को भी ऐसा होना चाहिए जो एहसान को एक्सेप्ट करे, जो खिदमत को एक्सेप्ट करे, जो सर्विस को एक्सेप्ट करे। अगर ऐसी कौम होती है, इमाम कहते हैं अलमारूफ़ो बेकदर अलमारिफा, जितनी तुम्हारी इल्म है, जितना तुम्हारे पास मारिफत है, उतनी ही नेकी के वो हकदार होते हैं। एक अच्छी कम्युनिटी को नेकी न पहुँचे, सर्विस न पहुँचे, इससे बड़ा जुल्म कहीं नहीं हो सकता। ये पहला जुमला इमाम का। इमाम का दूसरा जुमला, अलमरओ मकबूउन तहत लिसाने, इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा होता है, इंसान अपनी ज़बान से पीछे छुपा। आज की दुनिया अपीयरेंस को देखती है, उसके कपड़े देखती है। जब भी आप किसी शोरूम में जाइए, किसी दुकान में चले जाइए, वो पहले आपके कपड़ों को देखेंगे, ब्रांडेड हैं कि नहीं है,
आइंस

हम क्यों ब्रांडेड के पीछे भाग रहा है? लोगों ने कल्चर ऐसे बनाया है, उनके कपड़ों को देखते हैं, उनके जूतों को तक देखा जाता है, हाथ में सेलफोन तक देखा जाता है, वो किस तरह अपीयरेंस को अपने दिखाता है। मौला गाल फरमाते ठीक है, अपीयरेंस को बना नहीं करता, इस्लाम तुम्हारा जाहिर अच्छा होना चाहिए लेकिन तुम्हारी जबान भी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी जबान भी, अगर जबान अच्छी ना हो ये जाहिर मेरे काम आने वाला नहीं। जाहिर पर्सनैलिटी नहीं बनाती, इंसान का अपीयरेंस पर्सनैलिटी नहीं बनाती, इंसान का अंदर है जो इंसान की पर्सनैलिटी बनाता है। इंसान जब बोलने लगेगा, सलाम करने का अंदाज, जवाब देने का तरीका बता देगा ये बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, वो किस पोजीशन में है और इसका अखलाक कैसा है। मौला कहना फरमाते हैं अलमरओ मकबूउन तहता लिसाने। शेख सादी ने एक शख्स को देखा जो जाहिर उसका बहुत खूबसूरत था, अच्छे कपड़े पहने हुए था, अपने आप को बनाया हुआ था। तो शेख सादी ने देख कर कहा माशाल्लाह अच्छे लगते हो, बात भी तो करो, मैं देखूँ कि अंदर से भी अच्छे हो कि नहीं हो, जैसे दिखते हो वैसे हो भी कि नहीं हो। कभी कभार इंसान बाहर दिखाता है लेकिन अंदर कैसा है, जब बोलने लगता है, बात करने लगता है तो इंसान का अंदर का पता चलता है, पर्सनालिटी का पता चलता है। और तीसरा जुमला कीमत कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनु, हर इंसान की कीमत उसकी नेकियों से पहचानी जाती है, हर इंसान की कीमत उसके अखलाक से पहचानी जाती है, नहीं हर इंसान की कीमत उसके काम से पहचानी जाती है, काम से पहचानी जाती है। यहसिनो नेकियां, काम, उसके अखलाक, उसके खैर, जितना भी काम इंसान मजबूती से करेगा, अच्छा करेगा, वो काम बताएगा कि इस काम को अंजाम देने वाला कौन है, काम बताएगा इस काम को पूरा करने वाला कौन है। हर इंसान की कीमत जो वैल्यू लगाई जाती है उसके काम से लगाई जाती है, अच्छे काम से, मजबूत काम से लगाई जाती है। अगर हमारा काम अच्छा है तो खुद ब खुद हमारी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी हमारे काम के रिजल्ट में और हमारे काम के नतीजे में। ये तीन जुमले हैं जो विजडम से भरे हुए जुमले हैं। जाहिर जैसा इंसान कहता मैं तैयार हूँ सारी किताबें दे दूँ, इन जुमलात को मौलाए कायनात के अपने नाम कर लो, उसके नाम होने वाले नहीं हैं। और तीन जुमले मौलाए कायनात के जो अदब से रिलेटेड हैं, इंसान के वे ऑफ लाइफ से रिलेटेड हैं, इंसान के कंप्लीट अखलाक से रिलेटेड हैं, वो कहता तीन जुमले ये हैं अफदिल अला मिन शेत तकुन अमीरो, तुम अमीर बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, एज ए कमांडर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तुम्हारा हैंड अपर हैंड रहे तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, एक काम करो दूसरों पर एहसान करना शुरू कर, दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दो, दूसरों की मदद करना शुरू कर दो। जितना तुम दूसरों पर कर्म करते चले जाओगे तुम अमीर बनते चले जाओगे। या अमीर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसे वाले बनते चले जाओ, अमीर का मतलब तुम्हारा रोल रहेगा उसकी ज़िंदगी में, वो कभी तुम्हें भूलेगा नहीं, खुसूसी वक्त, खुसूसी तौर पर मुश्किल वक्त में किसी के काम आ जाओ, वो तुम्हें ज़िंदगी भर तुम्हें याद रखेगा। मुश्किल वक्त में किसी के काम आना है पैसे के ज़रिए से, इमोशनल सपोर्ट समटाइम्स में भी हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, हत्ता इंसान किसी को सलाम भी करता है ना वो सलाम भी याद रह जाता है। अफदिल अला मन शेत, अमीर बनना चाहते हो, लोग मुझे सलाम करें, लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, लोग मुझे कमांडर माने, लोग मुझे लीडर माने, बिस्मिल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, दूसरों की खिदमत करते चले जाओ, दूसरों पर एहसान करते चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अमीर बना दे। या दूसरा जुमला वहतज इला मन शेत तकुन असीर हो, अगर नियाजमंद हो जाओगे, अगर फ़कीर हो जाओगे, अगर लेने वाले बन जाओगे, जाहिर सी बात है लेने वाला जब बंदा बन जाता है दूसरे उस पर अमीर बन जाएंगे और ये बंदा असीर बन जाता है। किसी का एहसान लेने से पहले सोच लो तुमने एहसान ले लिया तो उसके सरेंडर हो गए, वो तो उसके सरेंडर हो गए। बहुत कम लोग हैं जो एहसान करने के बाद भूल जाते हैं, अक्सर लोग याद रखते हैं, कभी कभार मुमकिन है दोहरा भी दें, रिपीट भी कर दें, अगर हम ना होते तो तुम्हारी क्या हालत होती, हम ना होते तो तुम्हारी क्या ज़िंदगी होती, हमने तुम्हारी ज़िंदगी को संभाला। मौला गाना फरमाते परहेज़ करो कभी किसी के सामने मोहताज ना बनना, अगर मोहताज बन गए तो तुम असीर बन जाओगे, उसके प्रिजनर बन जाओगे। ये दूसरा जुमला जो अदब वाला जुमला है, बड़ा बड़े खूबसूरत जुमले हैं, हर एक जुमले पर इंसान तफसील से गुफ्तगू कर सकता है। वहतज इला मन शेत तकुन असीरो, अगर किसी के सामने जिसके सामने चाहे हाथ फैला दो, कॉमन स्टेटमेंट दे रहे हैं मौलाए कायनात, उसके बाद तुम असीर बन जाओगे। इसके बाद उलमा कहते हैं सलाम करके अमीर बनो, सलाम।

स्लोगन्स इमोशंस ले आते हैं, स्लोगन शहरी ज़िंदगी का मतलब प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, महाफिल ऑर्गेनाइज करना, स्लोगन्स में शामिल होना। कितनी रिवायतों में हमारे पास है, जब भी सलवात पढ़ना तो बुलंद आवाज़ में पढ़ना। क्यों सलवात बुलंद आवाज़ में पढ़े? ताकि ये हमारा स्लोगन है, ये हमारा शार है। शार दिल में नहीं दिया जाता, शार को ज़बान पर आना पड़ता है, स्लोगन्स को रिपीट करना पड़ता है, स्लोगन्स को दोहराना पड़ता है। शार ही ज़िंदगी, हम कहेंगे मौलाए कायनात की तरह ज़िंदगी गुजारो, इट्स डिफ़िकल्ट। मौलाए कायनात ने उस्मान बिन हुनैफ के नाम ख़त लिखा, ख़त लिखकर कहा कि तुम मुझ जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, लेकिन मेरी मदद कर सकते हो। हम जिसे मुश्किल कुशा कह रहे हैं, वो मुश्किल कुशा शऊरी ज़िंदगी, शऊरी विलायत, विलायत इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, उसकी तरफ इमाम इन्वाइट कर रहे हैं सारे लोगों को, आओ मेरी मदद करो। फ़ाइनूनी बितक़वल्लाह, मेरी मदद करो। मौलाए कायनात की हम मदद कर सकते हैं, हम कौन है? मौलाए कायनात की मदद करने वाले। मौलाए कायनात कहेंगे नहीं, एक सोसाइटी बनाना है, एक कंट्री बनाना है, एक समाज बनाना है, एक घर बनाना है, एक इंडिविजुअल लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, तो सर्टन कंडीशन शुड बी देयर। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर मेरे परचम के साए में तुम्हें आना है, इसलिए मैं अमीर हूँ तो मैं अमीर उनका जो मोमिनीन है। मोमिनीन हो तो अमीर बनेंगे, मुत्तकीन हो तो इमाम बनेंगे, इमामुल मुत्तकीन और अमीरुल मोमिनीन। शऊरी तौर पर विलायत की तबलीग होना है, हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए जैसा मेरा इमाम चाहता है। इमाम इनवाइट करता है, इमाम ने कहा मेरी मदद करो। वलाकिन आईनूनी आउन यानी सपोर्ट करो, मेरी सपोर्ट करो, मेरी हेल्प करो, ताकि हम एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी कम्यूनिटी बना सकें। मौला मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? एज ए फॉलोअर ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम, एज ए लवर ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम फरमाते चार चीज़ों को तुम्हें अपनाना होगा, मैं जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कर देता हूँ। पहली चीज़ बे वरा इन, वरा और तकवा, बाज़ कमेंटेटर्स कहते हैं सिमिलर मीनिंग है। अपनी ज़िंदगी में तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का डर तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए। लोगों का डर हो या ना हो, लेकिन अल्लाह का डर होना ज़रूर है। जहाँ अल्लाह का डर आता है, इंसान प्रिकॉशंस लेता है, इंसान अपने आप को प्रिवेंट करता है। अल्लाह के डर का क्या मतलब है? बस कमेंट कहते हैं, अल्लाह का डर का मतलब तुम्हारा अंदर और बाहर एक हो। जैसे तुम्हारा फेथ है, वैसे तुम्हारा एक्शन होना चाहिए। जैसी तुम्हारी सोच है, वैसा तुम्हारा अमल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो अंदर सोच कुछ और हो, बोल कुछ और रहे हो, या बोल कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो। जैसे किसी स्कॉलर ने कहा था, मेरा उस कम्युनिटी से वास्ता पड़ा है, जो लोग सजदा भी करते हैं तो प्लान बनाते हैं किसको कैसे मारूं, सजदे में भी प्लान बनाते हैं किसको कैसे मारना है, तो मारने का तरीका बनाते हैं, सोचते हैं अपने जहन में। ये इसका मतलब तकवा नहीं है। तकवा का मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वैसे करूँ, जैसे मैं मान रहा हूँ वैसे अमल करूँ। कौल और फेल में यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुरान मजीद कहता है, तुम ऐसी बातें करते ही क्यों हो जिस पर तुम्हें खुद अमल नहीं करना है। नंबर वन तकवा का एक माना है। दुनिया का दूसरा माना तकवा का, ग्रीडीनेस से दूर होना है, हिर्स से दूर होना है, लालच से दूर होना है। जितना इंसान अपने आप को लालच से बचाता चला जाएगा, उतना ही इंसान की ज़िंदगी तकवा वाली ज़िंदगी होती चली जाएगी। और नॉर्मल जो हम ट्रांसलेट करते हैं तकवा को, अपने आप को हराम से बचाना, अपने आप को वाजिबात की तरफ ले आना, ये जो कॉमन ट्रांसलेशन है वर्ड तकवा की, प्रोटेक्ट करना अपने आप को हराम से। लेकिन बास कमेंटेटर्स कहते हैं, जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, ना तो ना खुद को हराम से बचाना ज़रूरी है, कभी कभार मकरूहात से भी बचाना ज़रूरी हो जाता है। ना तो ना हराम से बचाना ज़रूरी है, मकरूहात से बचाना ज़रूरी है, कभी कभार शुभा की चीज़ों से भी बचाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कि मुरव्वत की चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उसकी शख्सियत का असर दूसरों पर ज़्यादा होता है। इंसान अब कोशिश करे अपने आप को तकवा के दायरे में ले आए। दूसरी कंडीशन जो इमाम ने बताई इमाम की मदद के लिए, वो इज्तिहादन, मुसलसल कोशिश में रहना चाहिए। हमारे चाहने वाले को, हमारे मानने वाले को, हमारे रास्ते पर चलने वाले को। कोशिश का मतलब क्या है? कोशिश का मतलब लोगों को गाइड करने की कोशिश, लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश। कौन सा रास्ता मैं अपनाऊँ इस्लाह का, कौन सा रास्ता मैं अपनाऊँ गाइडेंस का, ताकि लोग उसकी तरफ आएँ और कामयाब हो जाए। उसका इरादा ये होना चाहिए कि दूसरे लोगों को दीन की तरफ लाने की कोशिश करें और अपने स्टैंडर्ड को भी बढ़ाने की कोशिश करें, इल्म के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से। इज्तिहाद सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, इज्तिहाद अमल में भी है।

0: वो खाक जो अपने अंदर हजारों उम्मीदें समाए हुए, कमसन बच्चों के खून ने पाकीजा किया जिसे, ये खाक अब आसमान में नए रंग बिखेर रही है। इस महकती खाक में सांस लेते हैं।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल गुजर गए, हजरत आदम को ज़मीन पर मबूत हुए, मगर आज भी इस दुनिया पर, इस सरज़मीन पर हक़ और बातिल की जंग जारी है। दुनिया बढ़ती जाएगी, गुज़रते जाएंगे लोग, बादशाहतें, मुमलिकतें, लेकिन हमारी गुफ्तगू उनसे है कि जिनके अंदर अभी भी हक की तलाश जारी है, या यूँ कहें कि उनके यहाँ फितरत का बीज अभी बाकी है कि जिसको हक की आबियारी चाहिए। इसी काम को लेकर हम आपकी खिदमत में अभी ख़याबान वली असर स्ट्रीट, जो कि तेहरान की एक बहुत बड़ी, बल्कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट कहलाती है, हम आपके लिए लेकर आए हैं जंग से पहले, जंग के दौरान और अभी के हालात, कि जो सीज़ फायर में चल रहे हैं, कि जहां अभी भी इम्कान है कि शायद कभी भी जंग शुरू हो जाए। अब हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक तो वो रिवायत कि जहां पर अमेरिका इसराइल ने मिसाइल मारे, वो जगह जहां पर लोग रहते थे, हॉस्पिटल, स्कूल, कि जहां बच्चे पढ़ने की नीयत से आए थे। दूसरा वो हम आपको दिखाएंगे कि ये पहले कैसे रह रहे थे और अब ये कैसे रह रहे हैं, क्या फ़र्क आया है इनकी ज़िंदगी के अंदर। तीसरा हम आपको उस जगह भी लेकर जाएंगे कि जहां पर रहबर को शहीद किया गया, एक ऐसा रहबर कि जिसने जुल्म के मुकाबले में दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवरों को सामने झुकना पसंद नहीं किया, बल्कि तवक्कुल अल्लाह किया और तौहीद की हक्कानियत को इस दुनिया में पेश किया। यकीनन ये ख़याबान वली असर हमें इमाम ज़माना की भी याद दिलाती है और ये इनकलाब उसी ज़हूर की तरफ बढ़ता है। हम आपको दिखाएंगे कि असल रिवायत इलाही क्या है।

0: इमारतें फिर बन जाएंगी, मगर जो इन पर गुजरी है वो रातें वो लम्हे पलट नहीं सकते, वो जो बिछड़े हैं वो लौट नहीं सकते, वो दीवारों पर लगी तस्वीरें, ताकतों पर रखी किताबें जो पारा पारा हो गई, खाक में तहरीरें बिखर गई।
1: तेहरान का ये इलाका रिसालत का इलाका है जो कि एक रिहायशी इलाका है। 10 मार्च को यहाँ पर एक नहीं कई मिसाइल मारे गए। दुश्मन जो ये दावा करता है कि हम बड़ा प्रिसाइज, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम किसी को

को मार सकते हैं, मगर उसने एक ही जगह पर 300 घरों को बर्बाद कर दिया। 20 लोग शहीद हुए, जिसमें से 12 लोग एक ही फैमिली के थे। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लाशें भी कई दिनों के बाद मिली। मलबा आज इतने दिन गुजरने के बाद भी आपके सामने है कि ये दुश्मन चाहता यही था कि आम इंसानों का कत्ल करे।

दोपहर का वक्त, रोज़े की हालत में कितने लोग अपने घरों से इस उम्मीद से गए होंगे जब वो आएंगे तो इफ्तार करेंगे। कितने लोगों ने इन घरों में ये ख्वाब देखे होंगे कि वो अपने बच्चों के लिए शादी करेंगे। कितने लोग पढ़ने के लिए, कितने बच्चे रोज़ा रखकर इस नीयत से घर से निकले होंगे कि आज शाम को अफ्तारी करेंगे। गोके हालत जंग थी, शायद 18 या 19 रमज़ान थी और शब कदर की आमाल की तैयारियां भी होंगी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि जो घर से निकले हैं जब लौटेंगे तो उनके घर घर नहीं, खाक हो चुके। यहाँ पे जो शहीद हो गए या जिनके घर ख़त्म हो गए, यकीनन उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आज हम अगर इतने अरसे के बाद यहाँ पर आए हैं तो हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो जुल्म अमेरिका और इसराइल ने किया है उसे दुनिया तक बताया जाए। यही मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खासा है कि कभी भी जुल्म के मुकाबले में झुकना नहीं है और मज़लूम का साथ देना है। आए आज हम फैसला करें कि हम तारीख के किस हिस्से पर हैं। क्या कल हमारा नाम तारीख में लिखा जाएगा कि हमने जुल्म का मुकाबला किया या मज़लूम की सदा में सदा को बुलंद किया।

0: जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक ही फैमिली के लोग, मुझे बाकी नहीं मगर शहीद मेहदी यार उन जवानों में से एक जवान है कि जैसा कि आपको पता है कि ईरान में बहुत ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है और हाल ही में इनकी टीम भी वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने के लिए ट्रैवल कर चुकी है। ये भी ये चाहता होगा कि जब ये मैच हो तो ये अपने दादा के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसको देखे, मगर इसका कसूर क्या था? इसका कसूर यही था कि ये उस कौम और उस मिल्लत का जवान था कि जो जुल्म के मुकाबले में खड़ा होते हैं और मज़लूमाने जहान का साथ देते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि मज़लूम का साथ दो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो, और ये शहादत सआदत है। ज़ाहिरन ये सब चले गए मगर इनका खून जो है वो आने वाली नस्लों को जिंदा रखेगा।
1: आसमान पर रोशनी और बम की सदाएं, अस्पताल में भगदड़, इमरजेंसी में मरीज, और कोई वजूद उन हालात में दुनिया में आ रहा है कि बारूद की खुशबू फैली हुई है। नर्सें व्हीलचेयर को दौड़ाती, कोई नौजाद बच्चों को गोदों में उठाती, मगर कोई कहां इन दर्दों को समझेगा जहां जख्म खाक से भरे हुए हैं।
0: हम लोग जहां अभी खड़े हैं, ये एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है गांधी। न सिर्फ हॉस्पिटल है बल्कि यहां पे इसके बराबर में इसका होटल भी है, और ये एक बड़ा मॉडर्न और बड़ा एक्यूब जो है वो हॉस्पिटल है। क्यों इसको अमेरिका ने मारा? ताकि लोगों के अंदर इस्तेराब पैदा हो। एक जगह पर मिसाइल मारते थे और फिर उसके बाद हॉस्पिटल को भी हिट करते थे, ताकि वो जो लोग

इलाज के लिए आए हैं वो कहाँ जाएं, लोगों के अंदर बेचैनी हो, जिस तरह इन्होंने गजा के अंदर हॉस्पिटलों को बर्बाद किया, यहाँ पर भी उन्होंने कई हॉस्पिटलों को हिट किया।

ईरान के अंदर ये कहने को कि हम सिर्फ आर्मी या निज़ामी जगह को मारने की कोशिश कर रहे हैं या हम उनको मार रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शहरों में किसी शहर को मारा गया या मिसाइल मारे गए वो तेहरान शहर है। यहाँ पर न सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि हेरिटेज कल्चर की जगह, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, यानी हर वो चीज़ जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में उसका हिस्सा है, जहाँ वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजारता है। कहने को तो ये कहते थे कि हम तो ईरानी लोगों की मदद करना चाहते हैं, मगर ये कैसी मदद थी कि जब हॉस्पिटलों को वीरान कर दिया, मदरसों को खाक में दबा दिया, यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर रहे हैं, पुलों को तोड़ रहे हैं, ये कौन सी मदद है, ये कौन सी इंसानियत है? देखें, ये सब तो दोबारा बन जाएगा, मगर दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि जुल्म कैसा होता है और जालिम के मुकाबले में डट कर खड़े होना कैसे होता है। तकरीबन 60 के करीब हॉस्पिटल और क्लिनिक को जो है वो अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों ने, मिसाइलों ने निशाना बनाया, और तकरीबन 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसें जो हैं वो हिट की गई। वो ये तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो इंसानियत की बका और एक ह्यूमन के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन न जाने क्यों इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इस मामले में खामोश हो गए, कोई आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। देखें, यहाँ पर भी इस शहीद बच्चों की तस्वीरें, और ईरानियों ने हर उस जगह को जहाँ पर ये हमले हुए हैं उन्हें यादगार शहदा बना दिया।

ईरान में हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर या यूँ कहें कि 60-70% स्टाफ है वो फीमेल होता है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, नर्सेज हैं, और ना सिर्फ जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद ख्वातीन की है और उसमें अक्सर जो है वो शादीशुदा अपने घर वाली होती है, वो भी यही चाहती हैं कि वो अपने घर को सपोर्ट करें और माशरे की भी खिदमत करें। तो आप खुद सोचें कि जब कहीं पर जंग हो, बमबारी होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले लोग कहाँ जाते होंगे? हॉस्पिटल, क्लिनिक और जहाँ पर ये सब कुछ इलाज होता है। लेकिन अगर उन जगहों को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए तो ना सिर्फ हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ मुश्किलात में हैं, बल्कि इसके बाद से लेकर ये तमाम जो स्टाफ है वो भी अपने घरों को बैठा है। एक वीडियो आपने देखी होगी, हम उस हॉस्पिटल तो नहीं जा पाए जहाँ पर एक नर्स ने, जब वहाँ पर मिसाइल लगे हैं तो इनक्यूबेटर से 3 बच्चों को उठाया है और दौड़ती हुई भागी है। वो चाहती तो अपनी जान बचाकर अकेले भाग सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि ये 3 जवान आइंदा इंसानियत का फ्यूचर है, इस कौम का फ्यूचर है, उसे अपने आगोश में लिया और उनकी जान बचाई।

ये कार्ड है पेट्रोल का, कि जो सब्सिडाइज पेट्रोल की एक लिमिट है जो यहाँ पे हर किसी को मिलती है, इस पे तकरीबन 2.5 रुपए का लीटर पड़ता है, और अगर आप विदाउट सब्सिडाइज करवाना चाहें तो वो तकरीबन 8 रुपए का है। जंग यहाँ पर है और पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया। कितने दिन हो गए जंग को यहाँ पर, लेकिन आप देखें ना पेट्रोल की किल्लत है ना कोई लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल

आराम से मिल रहा है। जाने मोहतरम, अब आप हक के लिए खड़े हों तो दुश्मन खुद घुटने टेक देता है। ये तकरीबन 180 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, और तकरीबन हमने 20 लीटर जो है वो पेट्रोल डलवाया है। तो अब आप खुद सोच लें कि $1 में कितना पेट्रोल आता होगा।

वो मासूम बच्चियां, वो मेनाब की बेटियां, जो खुद फूल की कलियां थीं, जिनके हाथ किताबों के सफ़े पलटने के लिए थे, जिनके हाथ परिंदों को दाना डालने के लिए थे, जिनकी उम्र मुस्कुराहटों की थी। अचानक खामोशी, परिंदे परवास कर गए मगर खून आलूदा परों के साथ। अभी तो रोजे रखना शुरू किए थे, अभी तो नए कपड़े खरीदने बाबा के साथ जाना था, मगर अफ्तार न हो सका, न ईद तक पहुंच सके। माओ ने खाक से टुकड़ों को उठाया है।

है वो है ज़ाफ़रान। और आप जानते हैं कि ईरान ज़ाफ़रान की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी है, पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, स्वीट्स देख लें या आप, बहुत ये सारी चीज़ें लोकल प्रोड्यूस्ड हैं और बेहतरीन तरीके से जारी है। कहने का मकसद और दिखाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है वो आधी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है, तो जंग कौन जीता है। हम आए हैं तारीख को दोबारा लिखने, हम आए हैं ये बताने कि आज़ाद कौमें भी तरक्की कर सकती हैं, और असल आज़ादी का मतलब अपने आप को खुदा के हवाले करना है। आज़ादी से नहीं कहते कि इंसान अपने आप को जो है वो लिबास को कम कर ले या मगरबी सकावत को अपना ले। आज़ादी तो यही है कि इंसान अपने नफ्स से आज़ाद हो जाए और ख़ुदा की तरफ रुजू करे। यही एक दास्तान न सिर्फ एक शख्स की है बल्कि कौम की है, वो कौम के जो कई सालों से जद्दोजहद कर रही है, वो कौम के कई सालों से एक ही नारा लगाती है कि जुल्म के मुकाबले में डटे रहना है। और ये बातें नई नहीं हैं, ये बातें दर्स करबला का है, ये मकतबे इमाम हुसैन की कौम है कि जिसने अपने आप को कटवाना पसंद किया, ना कि दुश्मन के आगे झुकाना पसंद किया। तो यही चीज़ इंसान को ताकत देती है, और इस कौम ने आज आपके सामने वो करके दिखाया कि यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ पर कोई कमी महसूस की जाती है। दुनिया न जाने किस निगाह से देखती है और न जाने किस निगाह से प्रोपोगंडा करती है। वो यही तो है, एक तस्वीर जो है वो मैदान यानी ग्राउंड की पिक्चर है, और एक तस्वीर वो है जिसे दुश्मन दिखाना चाहता है, मगर असली तस्वीर जो है वो इलाही तस्वीर है कि इंसान अल्लाह की राह में कैसे होना चाहिए। और जब इंसान खुदा की राह की तरफ बढ़ता है तो खुद ब खुद वो निखर कर सामने आता है, खुद एक नूर की तरह आलम में छा जाता है। आज पूरी दुनिया इस कौम की हिम्मत और बहादुरी की बात कर रही है, तो इस कौम के पास कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ चली गई तो वो रहबर हैं, लेकिन वो भी नहीं गए, क्योंकि शहीद तो हमेशा ज़िंदा है।

कालीन आप देख रहे हैं, इस कालीन को बुनने में इन्हें 7 साल लगे, और ऐसे बहुत सारे आप ये डिज़ाइन देख लें, आप इसकी ज़र्फ़कारी को देख लें, आप इन रंगों को देख लें, तो आप क्या समझते हैं कि ये कौम इतनी आसानी से हार मानेगी जिसके कालीनों के जो डिज़ाइन हों वो 2-2, 2500 साल पुराने हों? तो उसको वो कौम हराएगी कि जिसे अभी बनने में भी 2 साल 200 साल हुए? आप ख़ुद बताइए, जंग कौन जीता?

जैसा कि आप देखते हैं कि इनका कल्चर, इनकी कदीमी आर्ट, इनकी सारी चीज़ें, हत्ता कि ये मॉल है, मगर इस मॉल के अंदर अगर आप फिरदौसी के शेरों को देखें जो कि इन्होंने लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है कि अगर ईरान ना हो और अगर हम ईरान को अपना बदन ना दें तो कोई भी जो चीज़ है वो ज़िंदा रहने वाली नहीं है। और कहते हैं कि अगर हम इससे बेहतर है कि अपने सरों को कटा दें और सरों के कटे हुए पहाड़ बना दें, ये ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने मुल्क को दुश्मन को दें। मुझे बताएं कौन सा मुल्क या कौन सा कल्चर अपने मॉडर्न मॉल्स के अंदर भी अपने इस तहरीक को, अपनी इस मूवमेंट को बयान करता है। ये इनके खून में पाया जाता है कि अपने मुल्क, अपनी आइडेंटिटी का दिफा करना है, चाहे दुश्मन कोई भी हो।

जैसे कि हमने आपको बताया कि इन्होंने हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, उसके अलावा इन्होंने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत हिट किया। जबकि आप जंग में जानते हैं, अगर जंग तो सिर्फ निज़ामी या फिर सोल्जर के साथ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को हिट किया, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग थी उनको हिट किया, मेडिसिन की फैक्ट्रीज़ को हिट किया, और हत्ता यहाँ तक के डेयरी जो फैक्ट्रीज थी यानी दूध दही और रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल बनाती थी उनको भी हिट किया। क्यों हिट किया? जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने हर फील्ड में अपने आप को एक कामयाबी के मकाम तक बना दिया था, और इस तरक्की का राज ये था कि जितनी इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी उतना ये तरक्की करते गए और तरक्की करते करते, और यही चीज़ दुश्मन को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकी फैक्ट्रीज़ को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने की कोशिश की ताकि ये कौम जो है वो नुकसान में हो और अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके। मगर ये कौम, ये मिल्लत इमाम हुसैन की है, जिसका इरादा बदनों के कटने से नहीं रुकता।

सिर्फ लाइब्रेरी अलग से नहीं है बल्कि ये उसी मॉल का हिस्सा है, वो मॉल कि जो इस एशिया का ख़ास तौर पर जब कहें कि रकबे के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, और उसी मॉल के अंदर ये लाइब्रेरी है और इसमें 70,000 किताबें हैं। मुझे आप बताएं दुनिया के कौन से ऐसे मॉल हैं कि जहाँ पर किताबें पाई जाती हैं। यहीं से पता चलता है कि ये कौम अपने कल्चर को, अपने चीज़ों को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखी हुई है। और इल्म हासिल करना और इल्म को अपने अंदर समेटना, जाहिर है जो किताब पढ़ता है वो बहुत कुछ सीखता है। आज वही कौमें कामयाब हैं जो किताबें पढ़ती हैं, इल्म से मोहब्बत है उन्हें। रहबर शहीद फरमाते थे कि जिस तरह आज लोग अपने थीसिस के लिए या रिसर्च पेपर्स के लिए इंग्लिश को रेफरेंस बनाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मकसद ये है कि लोग फारसी को अपना रेफरेंस के लिए यूज़ करें, उसके लिए उन्हें ज़बान सीखनी पड़े और उसके लिए इतना काम हो। तो इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि जब एक मॉल में 70,000 किताबें हैं तो लाइब्रेरियों में कितनी किताबें होंगी। आइए हमारे साथ लाइब्रेरी को देखते हैं।

0: 61 हिजरी की करबला ने हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच कर ये बता दिया है जो मकतबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शागिर्द होगा उसके बदन के टुकड़े तो बिखर जाएंगे मगर वो झुकेगा नहीं। खयाबाने किश्वर दोस्त से उठने वाली खाक ने आज के दौर में हक और बातिल को वाजे किया है कि जान का चला जाना नुकसान नहीं बल्कि हयात है। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्ला।
1: दुनिया कहती थी कि महलों में शख्स रहता है, कहते थे कि इसकी दुनिया में बहुत जायदाद है। कई लोगों ने कहा कि ये बंकरों में जिंदगी गुजारे, मगर वो शख्स यही कहता रहा कि जब मेरी सारी आवाम सड़कों पर या आम जिंदगी गुजारती है तो मैं क्यों बंकरों के अंदर चला जाऊं। हाँ, वो एक शख्स की जो खलूस और इखलास के साथ रोज़े की हालत में अपने मौला की तरह अपने खाले के हकीकी से जा मिला, यकीनन रूह बदन से निकल गई मगर उसने ऐसी परवाज की आलम को अहाते में ले लिया। हर एक दिल उसके लिए उदास है। वो एक सादा सी जिंदगी गुजारते हुए वो एक आम इंसान की तरह कि जहाँ वो जानता था कि मेरी हुकूमत में अगर एक शख्स कम से कम गजा खा सकता